0: 0301-3865-090. Address, Lar Tower, 1st floor, Sophie Road, Bursa, IBA University, gate number 2, Sakhar. Glamour Institute of Science and Technology. Learn skills. Build your future.
1: Yaar macha kya? Kithe vanya? Ghar mein betho hai haan, par theek hi naya. Shayad mujhe zindagi laayak ka dawai nahi thai.
2: Tho bhala, cha chua tukhe. Saaf saaf budha maslo chai.
1: यार हिक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था ऐं सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
2: यार तुजा घणा न बस हिक ही मसलो आ
1: हिक इहो किए
2: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थींदो ऐं न ताकत मिलंदी
1: त पो मां छा कयां
2: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो भुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
1: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
2: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616
3: 4-4-2-4-1-8-6-9 खुशखबरी डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन MBBS जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी
4: है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: ही आहे सिंधजी दिल
1: लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ्ता डॉक्टर नदीम अख्तर कोराई MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी
2: आम अकबर शुगर क्लिनिक सामो म्युनिसिपल स्कूल लाड़कानो
1: टाइम रोजानो मंझन जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई आचर ते सुबह जो 10 बजे खां मंझन जो 1 बजे ताई याद रखंदा जुमे जे दी क्लिनिक बंद रहंदी
2: मोबाइल नंबर 0334325127
3: अदी दसु तडे मुजी नोह के औलादी कोनती थिए
4: भेण डॉक्टर सुमेरा बिरोही का पेंजी नियाणी जो इलाज करायो सी हाने मुजी नियाणी औलाद वारी आहे
1: खुशखबरी औरतुन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर सुमेरा बिरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़कानो माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी सीजर ऑपरेशन औरतुन में अंडेदानी बच्चेदानी रसोलिन जो इलाज ऑपरेशन बेओलादी जो खास इलाज टेस्टों हमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर बेन बीमारिन जो इलाज औरतुन में गैर जरूरी पानी खून जो इलाज याद रखंदा गरीब मरीजन के खास रियायत डिनी वेंदी डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुन जे बीमारिन जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर VIP रोड लाड़कानो टाइम रोजाना शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताई आचर सुबह जो 11 बजे खां मंझन जो 3 बजे ताई वधिक मालूमात जे लाए मोबाइल नंबर 0333071553 अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.

साईं मुंहिंजा अॼु ईद जो टियों ॾींहुं आहे ऐं असां अव्हां सां गॾु गॾु आहियूं प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह में ऐं अव्हां ईद जो रोशन सुबुह प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां जंहिंमें असांजूं स्टेशनियूं नशर थियनि थियूं सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ास मोरो मेरापुर सकरण मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं मां मुंहिंजो मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो ऐं साईं मुंहिंजा दिलि उदास थिए पई मायूसी थिए पई त जेकर जेके ईद जा टे ॾींहं गुज़रंदा वञनि पिया दिलि चए पई जेकर ईद न गुज़रे ऐं ईदूं हुजनि त बहितर आहे पर असां खां वधीक जेको आहे सो मज़ो ईंदो आहे ईद जो ॿारनि खे छो त ॿारड़ा हमेशह घुमण फिरण में ख़र्ची वठण में ऐं रांदि रूंद करण में नवां कपिड़ा पाइण में वधीक मसरूफ़ हूंदा आहिनि उन्हनि जे करे हुन जी ईद वधीक मज़ेदार हूंदी आहे पर जेकॾहिं असां चवंदा आहियूं त कंहिं बि इंसान जी दिलि नंढड़ी न थींदी आहे इंसान भले वॾी उमिरि वारो थी वञे भले झूनड़ो कुराड़ो थी वञे पर हुन जी जेका दिलि हूंदी आहे उहा जवान हूंदी आहे ऐं इंसान पियो सोचींदो आहे त जेकर असां नंढड़ा थी वञूं ऐं वरी असां उहे ईद जूं ख़र्चियूं वठूं चाचे खां मामे खां बाबा खां ऐं मासीअ खां ऐं पंहिंजे पुफीअ खां बहरहाल जेके बि ईद जे ख़र्ची वठण वारा ॿारा हूंदा आहिनि उहे वेठा ख़र्चियूं गॾु कंदा आहिनि हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहिनि त मां हेतिरा पैसा गॾु

या माहितरा पैसा गॾु कया ऐं साईं मुंहिंजा नंढे हूंदे तव्हां पाण सोचींदा हूंदव त कीअं ईद जा कपिड़ा वठंदा हुआसीं लिकाए पाईंदा हुआसीं ऐं चवंदा हुआसीं को कपिड़ा असांजा ख़राब न करे उनखे इस्त्री करे लिकाए रखंदा हुआसीं बहरहाल ऐं उन में वेंजण जूं तयारियूं कंदा हुआसीं पंहिंजो हार सिंगार कंदा हुआसीं ऐं मस्जिद में वेंदा हुआसीं ऐं नंढे हूंदे जा जेके मंज़र हूंदा आहिनि इहो न सोचींदा हुआसीं त अॻी सिफ़ में असांखे नाहे वञणो पर माण्हुनि खे लथाड़े करे अॻी सिफ़ में वञी हर माण्हू वेहण जी कोशिश कंदो निमाज़ में ऐं कोशिश कंदासीं त लटा कपिड़ा नवां पाए ईद ख़र्ची वठण जो बहानो करे ऐं जेको आहे सो कतार में पैसा वठंदासीं वॾड़नि खां ऐं वरी पाण में जेके नंढा ॿार गॾिजी करे पंहिंजो शइ वठणु वेंदासीं दुकान तां सामान वठंदासीं ईद जा अहिड़ा अहिड़ा रांदीका वठंदासीं जेके खेॾण में कमु ईंदा ऐं दोस्तनि सां गॾु घुमंदासीं साईं जा अहिड़े हवाले सां जेको गॾु पढ़ण वारो दौर बि आहे उहो बि हिकिड़ो अजीब हूंदो आहे जेके क्लास फेलो पहिरें दर्जे खां पंजे दर्जे ताईं मिडिल क्लास हुजे ऐं मेट्रिकुलेशन ताईं या पंहिंजो कॉलेज जो दौरु हुजे यूनिवर्सिटी जो दौरु हुजे उहो बि ॾाढो भलो हूंदो आहे पोइ को माण्हू ऑफिसर थी वेंदो आहे को पंहिंजो हारी नारी हूंदो आहे त को मज़दूर हूंदो आहे को कारोबारी माण्हू हूंदो आहे को नंढो मुलाज़िम हूंदो आहे पर जेको हुननि जो गॾु पढ़ण वारो दौरु हूंदो आहे ऐं गॾु क्लास फेलो में रहण जो दौरु हूंदो आहे उहो सोचींदा आहियूं त जेकर ॿीहर ओड़ो दौरु अचे त गॾु पढ़ूं गॾु खेॾूं ऐं बि अजीब माहौल हूंदो आहे ईद जो त असां ईद वरी वरी ईद अचे वरी वरी ख़र्चियूं वठूं नवां कपिड़ा पायूं ऐं गॾु घुमूं बहरहाल अहिड़े हवाले सां हिकिड़ो पंहिंजो शायरीअ जो आइटम आहे हालाणी शहर लाइ हालाणी शहर वॾो ख़ुशि नसीब आहे जंहिं लाइ दीबा सर ही कलाम ठाहियो आहे त वरी ईद अचे नंढड़ा थी वञूं गॾिजी इंजॉय कयूं था।

जीअं साईं मुंहिंजा वरी नंढा थी वञूं ऐं ख़र्चियूं मिलनि। बहरहाल असां वरी ॻाल्हि कंदासीं त वॾड़नि जो पहाको आहे त मेंह त टेह। इहा ख़बर इन लफ़्ज़ जी, इन पहाकी जी उन माण्हूअ खे हूंदी जंहिंजो उन्हनि शयुनि सां तालुक़ु हूंदो, जंहिंजो उन शयुनि सां वास्तो हूंदो, जेके असांजा हारी नारी हूंदा, जेके असांजा मालवंद हूंदा, मेहार हूंदा ऐं बकरार हूंदा, रेढार हूंदा। इहा ख़बर उन्हनि खे हूंदी त मेंह त टेह छा खेजिबो आहे। त असुल साईं जा ॻाल्हि मेंह जी कंदासीं, जेकॾहिं अवां मेंहूं धारियो था, अवां माल धारियो था, रिढूं धारियो था, बकरियूं धारियो था, त हुन जी टहल कयो, हुन जी ख़िदमत कयो। ईअं न आहे त वठी असां हुन खे ॿधी छॾियऊं, असां हुन खे किले सां

बंदि करे छॾियऊं, इहो बिल्कुल सरासर गुनाह में शामिल थिए थो। छो त जेकॾहिं असां पाण 2 कलाक बुख ते रखंदासीं, पाण खे उञ ते रखंदासीं ऐं पाण खे असां उस में रखंदासीं, या असां पाण सियारे जी थधि में पाण खे रखंदासीं, कुझु कपिड़ा न वेड़ींदासीं, त बिल्कुल अहसास थींदो कंहिं ॿिए जो त वाकई इन शइ में तकलीफ़ आहे। त जेकॾहिं तव्हां माल ढोर ढगा धारियो था त उन जी ख़िदमत ज़रूरी आहे, उन जी टहल ज़रूरी आहे। जेकॾहिं पहिरीं ॻाल्हि त पखी पुखणा जेके आहिनि, तव्हां हुन खे कोशिशि कयो त हुन खे तव्हां क़ैद न कयो, तव्हां हुन खे बंदि न कयो। जेकॾहिं तव्हां हुन खे क़ैद कयो था, बंदि कयो था, हिकड़े शौक़ में तव्हां पखी हिकड़ा धारियो था, त उन जी ख़िदमत टहल तव्हां जे हथ में आहे, तव्हां खे ज़रूरु करणी आहे। उन जो दाणो, उन जो पाणी, उन खे गर्मीअ खां, झोले खां, गर्म हवा खां पाण उन खे बचाइण, ऐं सर्दीअ खां उन्हनि पखियुनि खे बचाइण, टाइम सां उन खे दाणो पाणी विझणु ज़रूरी आहे। इहा आहे टहल। जेकॾहिं 24 कलाकनि में हुन खे उहा शइ नथी मिले त उहो बिल्कुल वरी असां सभु गुनाह में शामिल थी सघूं था, जंहिंजे कब्ज़े में उहे धारियल शयूं आहिनि। त साईं जा फसल बि अहिड़े नमूने आहिनि, जेकॾहिं तव्हां फसल कयो था त हुनखे पंहिंजे वक़्त सां ॿिज पोखियो ऐं हुननि जो वक़्त सर रोंबो कयो ऐं हुनखे टाइम सां भाण भुती ॾियो, हुनखे टाइम सां पाणी ॾियो ऐं हुनखे टाइम सां पोखियो ऐं लिणो। ऐं अहिड़े नमूने बाग बाग़ीचा आहिनि, त बाग बाग़ीचनि जो बि ख़ासि ख़्याल रखणो आहे, हुनखे ॿिज भाण ऐं पाणी हुनखे टाइम सां ॾियणो आहे, हुनखे स्प्रे करणो आहे। त मुंहिंजो मक़सदु आहे त जेका शइ अव्हां जे कब्ज़े में आहे, जेका शइ अव्हां जे हथ में आहे, त हुन जी टहल कयो, हुन जी ख़िदमत कयो। त अहिड़े हिसाब सां पंहिंजो पहाको आहे त मेंह त टें, यानी हुन जी टहल कयो, हुन जी ख़िदमत कयो। हीउ ख़ुशि नगमो ॿुधूं पिया ईद जे हवाले सां, गॾिजी पंहिंजो कयूं।

जी हा समय ने प्रोग्राम में असा जो इन वक्त टाइम थे पियो न्यूज ब्रेक जो न्यूज ब्रेक का कमर्शियल ब्रेक का बाबत में वापस इंदासी तवा जा नाला लिखंदासी फेसबुक ता इनबॉक्स मा टेलीफोन लाइव कॉल मा कदे भी न मन जो असा गड हो जो हलो पहन कमर्शियल न्यूज ब्रेक की तरफ।

जी हर समय न वापसि जो कहीं प्रोग्राम ईद के रोशन सुबह में जो वहाँ प्रोग्राम बुध पिया GFM 88.8 लाड़कण के लाइव स्टूडियो में जी नशीर कन पे असा स्टेशनों जैमें सखर मीरपुर खास मोरो मेरापुर सकरंड मटियारी मातली स्टेशन तवासा जो प्रोग्राम बुध पिया इन प्रोग्राम वो न पाया बुध इहो असांजो जेको कंप्यूटर में प्रोग्राम हले पियो ऐं कंसोल ते जेका हथनि जी चुरपुर आहे बटणनि जी चुरपुर आहे ऐं आवाज़ घटि वधि आहे ऐं जेको आहे फेडर हेठि मथे आहे असांजो आमिर अली जागीराणी बलोच असां सां गॾु आहे जेको तव्हां सां तव्हां ताईं असांजे आवाज़ जूं लहरूं पहुचनि पियूं त उन जो साथ आमिर अली जागीराणी बलोच जो वॾी महिरबानी ऐं साईं मुंहिंजा ॻोठ मोलजणे माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली सोलंगी ज़हीर अब्बास ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब ख़ान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठ अहमद ख़ान लाशारी लॻे झूणनि खां नियाज़ अली लाशारी नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसर अला जतोई ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अहसन फहद अहद ऐं शादाब चांडियो ऐं ॻोठ शुटो खान मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान मुजीब रहमान जूणे जो यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई ऐं असांजो ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकण खां सूमर फ़कीर कोरकाणी ऐं मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी ऐं भुटो सोलंगी प्रोग्राम ॿुधनि पिया हुनजी वॾी महिरबानी ऐं मीरपुर ख़ासि कई यासमीन मलिक जी वॾी महिरबानी ऐं सभिनी दोस्तनि लाइ असां हिकिड़ो नगमो चूंडियो आहे ईद जे हवाले सां गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी हा समेन ईद जो अॼु टियों ऐं आख़िरी ॾींहुं आहे, पर ईद मुबारकनि जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे। अव्हां दोस्तनि जूं ईद मुबारकूं अव्हां जे नावे कयूं पिया। ॻोठ शहर मोरे खां हाफ़िज़ लखमीर ढिलू ऐं हाफ़िज़ सांवल ढिलू शामीर ढिलू प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरां जी वॾी महिरबानी। सजादुल्लाह जमाली ॻोठ मोहम्मद हसन जमाली नवाबशाह खां ऐं नवीद अहमद चन्ना घोटकी खां, मोहसिन ॾहर मीरपुर माथेले खां, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ास खां ऐं ॿाहिरां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं अज़ीज़ जरवार वसीम जरवार बि मीरपुर ख़ास खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, रांझन कोरी कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ास खां ऐं मीरपुर ख़ास खां ख़ालिक लाशारी ऐं राशिद आवाण मेहरापुर खां प्रोग्राम ॿुधे पियो। भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठ सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, ऐं जंहिं भाउ फोन कई उन नालो सम्झ में ई न आयो, पर बहरहाल नज़रमंद मंगरियो ऐं गुलाब खान मंगरियो बि हुन सां गॾु आहे। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं सिंगार अली जमाली आफ़्ताब जमाली बांदी खां मैसेज कयो। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद हारून संदीलो ॻोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां ऐं नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, मोहम्मद मीरण जखरणी जेकबद खां। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। वरी अव्हां सभिनी दोस्तनि जे नां ही ख़ूबसूरत नगमो।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबुह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार माण्डन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: साईं कुछ खबर अथव
3: छा थियो सोणी?
2: बिन दिन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे। नई बैटरी कदे आणींदा?
3: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओ करे छॾींदा।
2: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
3: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
2: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
3: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओ बणायो। असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे।
4: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर UPS इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिणु लॻाया वञनि था।
3: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा। सरगोदा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल

0: और से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: अदा छा गाला डाडो परेशान पियो लगी भाऊ छा कया बिन सालन खां अमर पथरिन जे मर्ज में मुब्तला आहे। डॉक्टर ऑपरेशन जो चवन था गरी फीस जो बुधी हर दफे मायूस थी मोटी इंदो आहां।
2: भाऊ मायूस न थी, अज मां तोखे अल्लाह वारन इंसानन जो दस थो जा जिन पांजी अमर जे नाले ते एक खैराती इदारो ममताज वेलफेयर खोलियो आहे जे में मरीजन जी चकास ऑपरेशन मुफ्त में कन था।
1: जी हाँ, बा अखलाक बा किरदार इंसान दोस्त आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी ए संदस घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री अल्लाह पाक जी राह में वक्फ करे छड़ी आहे। इते गुर्दे मसाने में पथरी, कैंसर, इन्फेक्शन, पेशाब में जलन ए रुकावट, बेओलादी ए गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औजारन ए मशीनन सा ए लेजर जरिए इंडोस्कोपिक ए ओपन ऑपरेशन कयो वञे थो। याद रखंदा रोजानो चकास ए अल्ट्रासाउंड फ्री में कयो वञे थो जंहिंमें ऑपरेशन जे केस जी फीस नाहे वरती वेंदी। बस ऑपरेशन जो भी थोरो खर्च मसलन दवाउन ऐं कमरे जी फीस मरीज पाण दींदा। डॉक्टर साजिद अब्बासी ऐं डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी वेहण जो हंधु मुमताज वेलफेयर क्लिनिक अलनिसा मेडिकल सेंटर सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। आचर ते सुबुह जो 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224186।
3: खुशखबरी, कराची जी माहिर डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपिस्ट हाँ अवां जी पेंजे शहर लाड़काणे में मुकम्मल प्रोफेशनल फिजिकल रिहेबिलिटेशन मशकूं जदीद तरीके जो इलाज करे रही आहे जंहिंमें रीढ़ जी हड्डी हडन जोड़न फ्रैक्चर जा मसला कुल्हे जो जमी वञण हथन पेरन जो सुन थियण सीपी चाइल्ड स्पोर्ट्स इंजरी पठन में छिकताण मोहरन जा मसला कंध मथे गोडन चेल जो सूर लकवा मोच फालिज यानी अधरंगो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो इलाज किया वञे थो। याद रखंदा डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपी में मरीजन लाइ फीस में 50% रियायत जो ऐलान कयो आहे जीअं गरीब तोड़े अमीर हिन सहूलियत मां फ़ाइदो हासिल करे सघन। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घिंटी फाटक लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0310-3435-298।
4: मलूक, ओ मलूक,
5: खैर त आहे नूरी?
4: जल्दी कर जल्दी, पोएं साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज वठी अचो त जीअं हिन साल भी चजी पैदावार हासिल करियूं।
5: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां खे ॾे 125 खां 140 मण फी एकड़ ताईं पैदावार, जंहिं जो ताक़तवर बिज बीमारियुनि खां रहे महफ़ूज़। आम बिज जे मुक़ाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज सां मिले जजी पैदावार ऐं वॾो बूड़ो।
4: साईं, चइबो त हिन साल बि मुंहिंजा सोना कंगण पका?
5: हा हा, छो न। मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज तां हासिल करियो।
4: राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ
5: RSM लाड़काणो,
4: सजाद हुसैन बुघियो, मोबाइल नंबर 0312-1344-205।
5: एड्रेस नवीद फर्टिलाइजर, पुराणी अनाज मंडी, लाड़काणो।
6: अदी, छा गाला एडो खुश पई नजर अची?
4: हा भेण, बस खबर ही कुछ एड़ी आ, हाणे असां औरतूं भी पंहिंजी तकलीफ़ आसानीअ सां ॿुधाए सघूं थियूं।
1: जी हा, सिंध जी पहिरीं फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जंहिं पंहिंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मां लखे रुपया कमाइण बदिरां लाड़काणे में औरतुनि लाइ फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिन जी बीमारियुनि मसलनि पेशाब में रुकावट, जलन ऐं साड़ो, ज़ख़्म, बेओलादी, बुकी ऐं मसाने जी नालीअ में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेज़र ऐं चीरे वसीले करे थी। याद रखंदा डॉक्टर साहिबा चकास बुकिन जो अल्ट्रासाउंड ऐं ऑपरेशन बिल्कुल मुफ़्त कंदियूं आहिनि। बस कमरे ऐं दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा। ऐं हा, एक्स-रे, IVP ऐं CT स्कैन पिणु अधु पैसनि में कराए ॾिए थी। पेशावराना डॉक्टरनि ॾांहुं मरीज खणी वेंदड़नि जे भुलाइण ते तवजो न ॾियो। एड्रेस अलनिसा मेडिकल सेंटर, नद सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं ऐं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334-224-1869।
5: खुशखबरी, डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन MBBS जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची और FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कराची। माहिर अमराज हडे जा नवा ए पुराना फ्रैक्चर, हडे जो कैंसर, हडे जो नासूर, जोड़न जो पुरानो मूजी मर्ज, चेल जो सूर, बारन में हडे ए जोड़ जा मसाला, वडी उम्र में हडन ए जोड़न जा मसाला, पैदाइशी टेढ़ल पेर, रांदन में लगल धक, जोड़न ए मास में गंद भरजी वञण, जंग ए बांह जा कैंसर, सुकी वाई, आर्थराइटिस, टुटल हडा ए बियन हडन जे बीमारियों जो माहिर सर्जन डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक ए ट्रामा सर्जन। टाइम रोजानो मंझन जो 3 बजे का रात जो 8 बजे ताई ए आचर जे दिन सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 4 बजे ताई। एड्रेस नेशनल मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड, लाड़काणो। राबते जे लाए मोबाइल नंबर 03012950036।
7: खबरी ए टू जेड यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काने ते अवां के हर शे मिले हिक ही छत हेठा। अवां के आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मजबूत स्टाइलिश स्कूल बैग्स या पायदार शूज, ए टू जेड यूनिफॉर्म ते मिले अवां के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, शूज एं बियो स्कूल जे जरूरत वारो सामान बाजार का इंतहाई घट कीमत में। कोई देर छाजी, अजु ही अचो असां जी खुसूसी ऑफर्स जो फायदो हासिल करियो, ताकि अवां जा बार रहन स्कूल जे लाए हमेशा तैयार एं मुतमिन। एड्रेस ए टू जेड यूनिफॉर्म, GPO रोड, लाड़काणो। राबते जे लाए मैनेजर वकार अली, मोबाइल नंबर 03131157672।
8: अनीसा खैर तो आहे, मंडकाए तो घुमे, धक लगो थई छा?
2: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंख जो हडो भजी पियो आ, तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ, पैसा भी कोन्हन के, सोचा तो ऑपरेशन किथां करायां।
8: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो, इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी वेंदे।
5: गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी, MBBS, FCPS, आर्थो, हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो। इते रोजानो हडन ए जोड़न जे मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो, जंहिंमें रोजानो चकास मुफ्त, रिपोर्टूं 40% फ्री, एक्सरे 40% फ्री, ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे। असां वटि हडन ए जोड़न जो सूर, संदन जो सूर, कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, चेल जो सूर, शुगर जा फट, हथन पेरन जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज, भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे का शाम जो 3 बजे ताईं, छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी। राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158794117 0333754061।
9: खुशखबरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ए मेडिकल जे दुनिया जो वडो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर, MBBS, FCPS, गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। इते हडन ए जोड़न जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ए चेल जो सूर, वडी उम्र जे माण्हुन ए नंढन बारन में हडन ए जोड़न जा मसाला, फ्रैक्चर, फिरियल पेरन ए जंगुन के ठीक करण, हडन ए जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर, हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन। टाइम आचर का जुम्मो, रोजानो सुबह जो 11 बजे का रात जो 8 बजे ताई। एड्रेस बैतुल शिफा बोन ट्रामा क्लिनिक, लग नौदेरो चौक, लाड़काणो। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन। एड्रेस सखर टाउनशिप, RF बिल्डर्स, बंगलो नंबर 20, सेक्टर नंबर 3, घोड़ा गेट, सखर। टाइम मंझन जो 2 बजे का शाम जो 6 बजे ताई। वधीक राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03368640025 फोन नंबर 07440571999।
10: अदी दसु तडे मुजी नोह के ओलादी कोनती थिए
11: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही का पेंजी नियाणी जो इलाज करायो सी, हाने मुजी नियाणी औलाद वारी आहे।
5: खुशखबरी, औरतुन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर, डॉक्टर सुमेरा बिरोही, MBBS, FCPS, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो। माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी, सीजर ऑपरेशन, औरतुन में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलिन जो इलाज, ऑपरेशन, बेओलादी जो खास इलाज, टेस्टों, हमल दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, बेन बीमारिन जो इलाज, औरतुन में गैर जरूरी पानी, खून जो इलाज। याद रखंदा गरीब मरीजन के खास रियायत डिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही,
12: जी औरतुन जे बीमारिन जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर वीआईपी रोड लाड़काणो
13: टाइम रोजानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताई आचर सुबह जो 11 बजे खां मंझन जो 3 बजे ताई
12: वधिक मालूमात जे लाए मोबाइल नंबर 0333-07-1553
14: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अजिया समय ने प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबह अवा प्रोग्राम बुध पाया जी एफ एम 88 के नेटवर्क तुम मेजबान नेमतुल्लाह जुणे जो अवा सा गड कर ऐं साईं जा असां ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्ति उन्हनि माण्हुनि जी जेके पंहिंजे फ़ाइदे लाइ न पर ॿियनि जे फ़ाइदे लाइ पाण पतड़नि पिया ऐं हिन दुनिया जे समूरे संसार में कई अहिड़ा बि इंसान मौजूदु आहिनि जेके पंहिंजे मुफ़ादनि खे छॾे करे ॿियनि जे फ़ाइदे लाइ पाण पतड़नि था ऐं अॼोके हिन सुबुह जो बि हिन धरतीअ जे मुख़्तलिफ़ खितनि में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अहिड़ा इंसान पंहिंजे नेक कम इंसान सां मुहबत करण वारे किर्त सां लॻी वेंदा आहिनि ऐं दरअसल अहिड़ा माण्हू पंहिंजे अमल सां सचा हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो इंसान ऐं इंसानत सां इश्क हूंदो आहे ऐं साईं मुंहिंजा जेकी माण्हू पंहिंजे तन ऐं मन खे ख़तमु करे पंहिंजे शरीर खे साड़े था छॾनि तन खे इश्क जो उहो ॿेड़ो हिन दुनिया में तारींदो रहे थो ऐं अहिड़ो माण्हू हमेशह ज़िंदा आहे जेको ॿियनि लाइ जीए थो ॿियनि लाइ पाण पतोड़े थो ऐं पंहिंजे नफ़्स ते कंट्रोल करे ऐं पाण खे झको करे ॿियनि लाइ जीए थो इहो ई इंसानत ऐं इंसान ऐं इंसानत जी भलाई लाइ आहे।

जी हा समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा या आखिरी लम्हन में कुछ दोस्तन जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदासीं। चनेसर गोठ खां अमर रमेश कुमार खत्री ऐं किरशन लाल मोहम्मद अमीन ऐं ज़फ़र शेख शंकर लाल प्रोग्राम ॿुधनि पिया। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ॻोठ ट्रगड़नि खां मोहम्मद नवाज़ मंगी गुड्डू सोना ऐं सुहेल मंगी प्रोग्राम ॿुधनि पिया। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। शहर बखर खां रेहाना खान हफ़ीज़ुर रहमान बि प्रोग्राम ॿुधनि पिया ऐं ज़ुहेब कटबर रहमतपुर मोहले लाड़काणे खां ऐं हुन सां गॾु आहे ज़ैनलाब्दीन अलाह ॾिनो जखराणी कश्मीर खां ऐं फ़क़ीर महरम अली जतोई घोट आगा खान जतोई खां वकार अली जतोई यूनस जतोई ऐं हुन सां गॾु आहे प्रदीप कुमार पीरशेर खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरां जी वॾी महिरबानी। ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि किली ॻोठ झंडोमरी खां।

अजिया समय ने कुछ नाला ती पहुंचाईंदी असांजी कोशिश इहा हूंदी आहे त को दोस्त रहिजी न वञे। इनबॉक्स जा नाला हुजनि, मोबाइल ते कॉल जा नाला हुजनि, फेसबुक जा नाला हुजनि या पंहिंजी संगत जा नाला हुजनि, बिल्कुलु कोशिश इहा हूंदी आहे त को बि दोस्त रहिजी न वञे। ऐं महबूब अली, शरबलोच, रिज़वान अली, इमरान अली ऐं नंढड़ी असमा ऐं नंढड़ी अदड़ी उज़मा शर बलोच थरी मीरवा खां कॉल कई। ॿारनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद सिद्दीक लुंड, महकुमद्दीन लुंड ॻोठ, वलीदाद खान लुंड खां ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। त समय ईद जो टियों ॾींहुं ऐं आख़िरी ॾींहुं असांजे प्रोग्राम जो, ऐं वरी हयाती रही त इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी। तेसी ताईं पंहिंजी मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त, अलाह निगामान, ऐं ही ख़ुशि नगमो इंजॉय कंदा रहो ऐं प्रोग्राम जो आख़िरी नगमो ॿुधंदा रहो।

0: DAFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे DAFM Network पर KTN News।
2: इदारे अमरीकी अहदेदार जो हवालो दीदे दावा कई आए तो ईरान अमरीका से एटमी प्रोग्राम बाबत गालन ते रास पो जाहिर कयो आए। वायदे जे घणनी शिकन ते अगारे बारे डी इत्तेफाक थी चुको हो। बिन्हीं मुल्क के आला क्यादत की मंजूरी अजा बाकी है। 60 दिन वाले मफामती माहदे में आपने हुरमुस में रुकावट गुजारण की शिक शामिल होंगी। ईरान 30 दिन अंदर आपने हुरमुस में बारूदी सुरंगू हटाइंद अमरीका ईरान के सामू की नाकाबंदी खत्म कर मफामती याददाश्त सही जंग का सब का वही कामयाबी होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से वायदे जो मसौदो इसराइल के मोकले छो। वायदे में आमने हुरमुस अमरीकी नाकाबंदी खोलने जो शिकू शामिल। बरतानवी अखबार दावा कई है तो मफामती याददाश्त नामे ते सही थी वजन की सूरत में ईरान के मंजमद थियल 12,000 अरब डॉलर असासन ताई रसाई मिली वी। आमने हुरमुस 30 दिन अंदर खोलने की तजवीज शामिल है। चीन चाहे तो वायदे की हतमी तौसीक गडल कम करो।

अमरीका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में ईरान जूं अक्सर तजवीज़ूं तस्लीम कयूं वयूं आहिनि। ॻाल्हियुनि में वॾी अगबराई थी आहे ईरान जी दावा। ईरान जे क़ौमी सलामती ऐं पने मामलनि बाबति ईरानी पार्लिमानी कमीशन जे मेंबर फिदा हुसैन पालकी जो चवणु आहे त ट्रंप ते यकीन आहे, वाइदनि ते अमल न करण संदसि आदत बणजी वई आहे। हिकु पासे जंग बंदी माहिदे जे वेझो पहुचण जूं दावाऊं त ॿिए पासे जंग बंदी जी भञकड़ी। ईरानी शहर बोशहर में धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। ईरानी सरकारी मीडिया तसदीक कंदे चयो आहे त बोशहर में धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। ईरानी मीडिया उहा बि दावा कई आहे त ईरानी फज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अमरीका जो हिकु जहाज़ किराए तबाह कयो। अमरीका जहाज़ तबाह करण वारी ख़बरुनि जी तरदीद करे छॾी।

0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: सुना साईं, कुछ खबर अथव?
3: छा थियो सोणी?
2: बिन दिन का सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे। नई बैटरी कदे आणींदा?
3: सोणी, इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
2: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
3: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
2: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणी वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
3: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो। असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे।
4: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर UPS इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिण लॻाया वञनि था।
3: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा। सरगोदा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924।
5: अदा छा ॻाल्हि आहे, ॾाढो परेशान पियो लॻी। भाऊ छा कयां, 2 सालनि खां अमड़ पथरीनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। डॉक्टर ऑपरेशन जो चवनि था, गरी फीस जो ॿुधी हर दफ़े मायूस थी मोटी ईंदो आहियां।
6: भाऊ मायूस न थी, अॼु मां तोखे अलाह वारनि इंसाननि जो ॾस थो ॾियां, जिन पंहिंजे अमड़ जे नाले ते हिकु ख़ैराती इदारो मुमताज़ वेलफेयर खोलियो आहे, जंहिं में मरीज़नि जी चकास ऐं ऑपरेशन मुफ़्त में कनि था।
5: जी हाँ, बा अख़लाक, बा किरदार, इंसान दोस्त, आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी ऐं संदस घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री अल्लाह पाक जी राह में वक्फ करे छॾी आहे। हिते गुर्दे ऐं मसाने में पथरी, कैंसर, इन्फेक्शन, पेशाब में जलन ऐं रुकावट, बेओलादी ऐं गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औज़ारनि ऐं मशीननि सां ऐं लेज़र ज़रिए इंडोस्कोपिक ऐं ओपन ऑपरेशन कयो वञे थो। यादि रखंदा रोज़ानो चकास ऐं अल्ट्रासाउंड फ्रीअ में कयो वञे थो, जंहिं में ऑपरेशन जे केस जी फीस नाहे वरती वेंदी। बस ऑपरेशन जो बि थोरो खर्च, मसलन दवाउनि ऐं कमरे जी फीस मरीज पाण ॾींदा। डॉक्टर साजिद अब्बासी ऐं डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, वेहण जो हंधु मुमताज़ वेलफेयर क्लिनिक, अलनिसा मेडिकल सेंटर, सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 03422241869।
7: मलूक, ओ मलूक,
8: खैर दाए नूरी,
7: जल्दी कर जल्दी। पोए साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज वठी अचो, त जीअं हिन साल भी चजी पैदावार हासिल करियूं।
8: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां खे ॾे 125 खां 140 मण फी एकड़ ताईं पैदावार, जंहिं जो ताक़तवर बिज बीमारियुनि खां रहे महफ़ूज़। आम बिज जे मुक़ाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज सां मिले जजी पैदावार ऐं वॾो बूड़ो।
7: साईं, चइबो त हिन साल बि मुंहिंजा सोना कंगण पका?
8: हा हा, छो न। मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज तां हासिल करियो।
7: राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ
8: RSM लाड़काणो,
7: सजाद हुसैन बुघियो, मोबाइल नंबर 03121344205।
3: खुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में दिलदार अखियुनि जी क्लिनिक जो बाक़ायदा आगाज़ कयो वियो आहे। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, अखियुनि जे बीमारियुनि जो माहिर ऐं फेको सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि, रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो, ऐं ग्लूकोमा यानी कारो पाणी, मोतियो पाणी ऐं इन खां सवाइ शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जी बीमारियुनि जो पिण इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, एड्रेस नज़ प्रिंस मेडिकल स्टोर, शेख जैद अस्पताल रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, ऐं आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं।
5: राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03163566286।
9: खुशखबरी लाड़काणे जी पहरी लेडी डॉक्टर हाइड्राफेशियल चमड़ी जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर इरम जूणे जो MBBS RMP डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन कॉम्प्लेक्स चाणका मेडिकल कॉलेज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। इतने कुंवर के चेहरे की खूबसूरती वधाने लाए ब्राइडल बीबी ग्लो मशीन जरिए कयो वञे थो। अज जे जदीद दौर में हाइड्राफेशियल मशीन से कयो वञे थो। क्रीमन जो मिक्सचर मशीन पान ठाए थी मशीन चेहरे के अंदर लिकल शयन के छिके बाहर कढे थी। गंजपन यानी मथे जे वारन छड़न जो इलाज PRP इंजेक्शन से कयो वञे थो। चेहरे जिस्म ते गैर जरूरी फुड़न के इलेक्ट्रो कॉटरी जरिए खत्म कयो वञे थो। चेहरे ते छाउन जो इलाज PRP मोहिडन जो इलाज केमिकल पीलिंग से कयो वञे थो। जिस्म ते एलर्जी दाणन जो इलाज लैश मिनियासिस इंजेक्शन से कयो वञे थो। याद रखंदा औरतुन जे चेहरे जे गैर जरूरी वारन जो इलाज लेजर थेरेपी जरिए कयो वञे थो। डॉक्टर इरम जूणे जो हाइड्राफेशियल चमड़ी जे बीमारियों जी माहिर। याद रखंदा जुमे जे दिन 1 बजे का 3 बजे ताईं औरतुन नंढड़न बारन जी चकास दवा।
10: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सियाहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नई का चीज में आहे लकी कड़ो
2: लई सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जो

आपका और अबू का रिश्ता जो नहीं चल रहा नहीं चल सकता। माँ तलाक याफ्ता होना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सौंगे उठाते।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क।

0: किया है सिंध जी दिल। मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नगर पार्कर फसा औरत जो घर में लाश थे पंजीवन साल की देरंग की दाल रामचंद कोली जो घर अंदर चोरे में टंगे लाश मिलो पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई बाद वासन हवाले कर छो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हामी को तोड़ना चाहता है। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलगई मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

अमेरिका ऐं ईरान वाइदे जे वेझो ज़रूर आहिनि पर अञा ताईं मुकमल वाइदे ताईं न पहुता आहिनि। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त अमेरिका ईरान खे एटमी प्रोग्राम तां पोइते धिकण जी पोज़ीशन में आहे। पक सां चवणु डुखियो आहे त सदर ट्रम्प वाइदे ते कॾहिं सही कंदो। वाइदे बाबति अगवाराई थी आहे, कुझु नुक़्तनि ते अञा ग़ौर कयो पियो वञे।

ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मीरकोश रेग्यूलेटर वटि धरनो। आबादगारनि चयो त सोनर माइनर, दिलवारो माइनर, दहरवाह ऐं ॿियनि शाखनि वाहन में पाणी जी खोट आहे। पाणी फराहम करे मुआशी कतलाम खां बचायो वञे। मीरपुर माथेलो में हिकु हफ़्तो अॻु झेड़े में पिया तौर माजी वेल ॻोठाणे जे वारस जो एहतजाज। वारसनि कातरनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ एस एस पी घोटकी ऑफिस अॻियां धरणो हणी छॾियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा पी जाधा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी दाधा नियर नई का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: एहलकारन की बहादुरी के सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान सच भरण का यूएन अमन मिशन में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। कश्मीरन के उम्मीद मौजूद कश्मीर वतन हल
2: इंसान
4: के ताकत के लिए सियासी अजम ए माली मामले अहमियत उजागर करने रखा वो है। कौमी फख्र की गाल्ह है पाकिस्तान गडियल कौम के अमन मिशन में पंजो वो हिस्सो है।

टे महीना अग शुरू कयल जंग जी कीमत अवाम अदा कर रो है। जंग हाँ खत्म थियण घुर्ज। न्यूयॉर्क के मेयर जहरान मुंदाणी सोशल मीडिया से बयान में चाहे कांग्रेस की मंजूरी का सिवाय शुरू थे जंग में अवाम की बजट मुतासर थी रही है। जंग सबब अमेरिका में पेट्रोल और बेन शय के अघन में वाधा थी।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
1: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट है।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
3: शदीद गर्मी सबब शहरियों की गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 बजे खां शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे की करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नई का चीज में आहे नकी कड़ो
2: लई सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: चाहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: प्रशासन की पहुंच डी वी मुसदे में अब्दुल हजमुल मामूल जी बहाल करने की तजवीज भी शामिल। बरतानवी अखबार मूजिब चीन चाहे तो मायदे में हथ कौम वे

ईरान वायदे जे वेझो जरूर आहिनि पर अञा ताईं मुकमल वायदे ताईं न पहुता आहिनि। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त अमेरिका ईरान एकेडमी प्रोग्राम खां पोइ ते धिकण जी पोज़ीशन में आहे। पक सां चवणु ॾुखियो आहे त सदर ट्रम्प वायदे ते कॾहिं सही कंदो। वायदे बाबति ईरानी सदर मसूद वायदे ताईं पहुचण ते पाकिस्तान जे कोशिशुनि जी वाखाण। मसूद पज़ेशकियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखियो आहे त वायदे बाबति पाकिस्तान जी असराइती कोशिशुनि ते किथे मलेशिया ऐं वायदे बाबति पाकिस्तान जे कोशिशुनि जी वाखाण। टे महीना अॻु शुरू कयल जंग जी क़ीमत अवाम अदा करे रहियो आहे। जंग हाणे ख़तम थियणु घुर्जे। न्यूयॉर्क जे मेयर ज़ोहरान रमदानी सोशल मीडिया जे बयान में चयो आहे त कांग्रेस जी मंज़ूरीअ खां सवाइ शुरू थियल जंग में अवाम जी बजट मुतासिर थी रही आहे। जंग सबबि अमेरिका में पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में वाधि थी।

रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जा तरीक़ा तब्दील थी चुका, अमन रस्ता हाइब्रिड ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन जे लाइ मुसलसल ऐं इज्तिमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 237,000 पाकिस्तानी अमन मिशन में पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई चुका आहिनि। यूएन अमन मिशन में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन जे लाइ नवां चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीरतकारी करे रहियो आहे।

0: सदर आसिफ अली ज़रदारी सेनेट ऐं कौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। कौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी जी मके में ग्रैंड पैलेस में सऊदी वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाकात। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी पाकिस्तानी आवाम सां मोहबत ऐं हाजिन जे लाइ सऊदी जे इंतज़ामनि जी वाखाण कई।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर।
2: इधर ते सिर्फ
3: सिंध की हो
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज़ GAFM 88 नेटवर्क। सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं सिंध की।

चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक मान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा पट और महंगाई 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर
1: हो तो आपसे की है GFM 88 नेटवर्क
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंह की आवाज़।

0: त वञा मिठा साईं प्यारी त प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस जो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहा 888 ते ऐं उन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था। लाइव कॉल नंबर आहे 0327 3684 620। कॉलर आहे, हलूं था कॉलर जे तरफ़ ऐं ॾिसूं था त कहिड़ो कॉलर आहे जंहिंजी पहिरीं कॉल आई आहे। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। पहिरों कॉलर जो आवाज़ ई न आयो। हा बिल्कुलु, ईअं बि थींदो आहे नेटवर्क इशू जे करे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा साईं केरु किथां खां ॻाल्हायो पिया?
1: साईं मुंहिंजा हाफ़िज़ लखमीर ढिलो फिरम मोरो बाबा।
0: जी हाफ़िज़ साहब, छा हाल आहे? ठीकु आहियो अदा?
2: मां ॿुधायो, तव्हां ठीकु आहियो?
0: ईद जो टियों ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रियो
1: भाउ?
0: उहो भला कीअं?
1: हा
0: ज़बरदस्त, जुमे जो ॾींहुं हुयो। गर्मी जी सूरत हाल खे ॾिसी करे असां गोश्त खे हथ पो विधो बाबा, ईअं न आहे, इलाही सारी गर्मी आहे ऐं वरी गोश्त खाइबो, ज़िंदगी आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का। बरहाल उज़ाह जो गोश्त आहे, हुन में अलाह ताला बरकत रखी आहे ऐं हुन में अलाह ताला ज़ाइको बि रखियो आहे तमामु घणो। अच्छा ठीकु आहे, हाणे हिकिड़ो मुंहिंजो तव्हां खां सवाल आहे। अगरि तोखे हाफ़िज़ साहब हिकिड़े ॾींहं जे लाइ मां वज़ीर आला करे छॾियां, त तूं सभ खां पहिरियां कहिड़ो कमु कंदे?
1: सभ खां पहिरियां जेको आहे जेके ग़रीब आहिनि, हमदर्द आहिनि, मां जेको आहे सो उन्हनि जी ख़िदमत कंदुसि ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो मदद कंदुसि। ॿिया जेके वीचारा माज़ूर आहिनि, हेल्प कंदुसि।
0: हिकिड़े ॾींहं में तव्हां मतलबु इहे एतिरा सारा कम करे सघो था?
1: साईं बिल्कुलु करे सघूं था, पर अलाह करे मिले।
0: चङो ठीकु आहे अदा, पंहिंजे दोस्तनि खे। जी हा ॿुधायो दोस्त अदा। हाउ
1: गानो ॿुधाईंदव या नात ॿुधाईंदव? जे अगरि गानो ॿुधायो त पोइ गानो चई ॿुधायूं असांखे। हिकिड़ो गानो
0: ॿुधायो, ॿुधायो गानो।

0: यार आवाज़ त तव्हांजो वाकई माशाल्लाह ॾाढो प्यारो आहे, वॾी महिरबानी अथव तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। ऐं कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि लिखिया आहिनि, उहे मैसेज बि प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं।
1: जी जी।
0: अच्छा, असां सां ॻाल्हाए फौजी पठाण खान फुलजी स्टेशन खां चए थो भाई गुलाब खान और लैला सुमरो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम अदा। ऐं अदा चवनि चवनि था या अली मदद।
1: पाक मौला अली मदद।
0: मौला अली मदद। ऐं सलाम ॾियनि पिया अली नवाज़ नूरपुर वारे खे। ऐं चए थो त असांजो इहो जेको दोस्त आहे न, इहो आशिकनि जो दादलो दोस्त आहे।
1: हिन जी लॻे त दोस्ती थी वई आहे पाण में ॾाढी पकी।
0: अॻ जा दोस्त हूंदा। दादा महिरबानी तव्हांजी मिला, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया अहिड़े तरीक़े सां। असां सां गॾु फ़क़ीर राहिब माशूक मेमण ऐं मिठल मेमण, आसिफ मेमण, मुनीर मोलाई भिरिया सिटी कोट बहादुर खां। ऐं चवनि था त असांखे कलाम ॿुधायो सुणा पंहिंजे अखियुनि खे
1: झलतूं।
0: सिंधी जो आवाज़ आहे सुणा पंहिंजे अखियुनि खे झलतूं, ॾाढी
1: ज़बरदस्त। दादला असांजा लाॾला आहिनि, हमेशह फरमाइश न कंदा, अॼु हिननि फरमाइश कई, लेकिन हिननि जी फरमाइश असां ज़रूरु पूरी कंदा हलंदासीं।
0: अच्छा ठीकु आहे, असां सां गॾु आहे असांजो प्यारो भाउ
1: न
0: फौजी खान पठाण जो त मैसेज आहे, हुन सां गॾु ॿियो बि असांजो हिकिड़ो प्यारो भाउ आहे जेको चवे थो त तव्हां असांजे तरफ़ खां डॉक्टर न्यास कालाणी साहब खे खोड़ सारियूं ईद जूं मुबारकूं।

त मुंहिंजा मिठा ताईं वक़्तु थिए पियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वापसि अची करे तव्हांजे पसंदि जा तव्हांखे सॉन्ग बि ॿुधाईंदासीं ऐं ईद जे हिन शो में तव्हां जेके असांजा ॿाहिरि ऐं भेनरूं आहियो शामिल, उन्हनि जा मैसेज बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं।

0: White Age Boost Aloe Vera की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको देखना निखरा चेहरा ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम
1: मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर एंड तजुर्बेकार जदीद ऑपरेशन थिएटर अल्ट्रासाउंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स सर्जिकल एंड मेडिकल सहूलतों मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत असांजो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल मीरवा रोड वेझो।

0: अच्छी तरह टेंडर होता है, या तो जाहिर है उसको मिंस्ड फॉर्म में कर दें आप, टेंडर जल्दी होगा। देन आप सॉल्ट यूज कर सकते हैं, विनेगर यूज कर सकते हैं, पपाया यूज कर सकते हैं, सिट्रस थिंग्स लाइक लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कचरी पाउडर यूज होता है फॉर दैट थिंग। तो इन सब चीजों से मीट अंदर तक टेंडर हो जाता है।
1: हेल्दी ईद, हेल्दी ईद, खाइए जरा संभाल के, सेहत के ख्याल से। हेल्दी ईद। आप सुन रहे हैं ईद उल अजहा की चटपटी ट्रांसमिशन,
2: मिर्च मसाला ईद।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

वठी वेंदुसि तोखे पाराए हर ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो। न्यूज़ ब्रेक खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, उन खां पोइ वापसि ईंदासीं। वापसि अची करे तव्हां सां ईयरफोन खणंदा, पूरी मालूमात लिखंदा ऐं लिखी करे असां

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम।

रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जा तरीक़ा तब्दील थी चुका, अमन दस्ता हाइब्रिड ख़तरनि खे मोड़े रहिया आहिनि। आलमी अमन जे लाइ जानूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट खे पाकिस्तान पारां भेजा पेश। ISER पंहिंजी पधाई साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन जे लाइ नवां चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे।

0: सुबुह सत नंबर में मस्जिद भर सां फायरिंग के नतीजे में उणवीह वरन जो तलहा ऐं पंजाह वरन जे सरबरस खान खे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
4: काश हमारे पास वैसे गाड़ी होती चमचमाती भी।
5: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अच्छा इहो शेर तव्हां जो लिखियल था हा हुकुम हुकुम सही
1: आहे।
0: खैर मुबारक साईं, खैर मुबारक वफ़ा साहब। अच्छा हाणे ईअं हूंदो आहे त डेली असांजे नेटवर्क ते काफ़ी ॿिया प्रोग्राम बि थींदा आहिनि दा। जी हा जुमे जे ॾींहं ते मुंहिंजो प्रोग्राम हूंदो आहे। उन खां अलावा लैला जेका आहे मोरो बि प्रोग्राम कंदी आहे। तव्हां वेबसाइट ते अगरि ॿुधंदा हूंदा त लैला मोरो बि प्रोग्राम कंदी आहे हफ़्ते जा चार ॾींहं। जी जी चलो ठीकु आहे, पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो साईं। ठीकु आहे, खैर मुबारक लैला बि चए पई, पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो। जी जी जी जलाल जो ठीकु आहे, अदा कोशिश कयूं था। खैर मुबारक, खैर मुबारक, वॾी महिरबानी अदा। अदा जन जी कॉल माशाल्लाह ॾाढी ढिघी थी वई ऐं लिसनर्स आहे असांजो, पुराणो लिसनर्स आहे असांजे नेटवर्क सां कनेक्टेड रहियो आहे। महिरबानी अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, SMS जे तरीक़े सां ऐं लाइव कॉल जे ज़रिए।

0: दोस्त वॾी महिरबानी अदा फौजी पठान साहब तव्हांजी अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखंदो महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा प्यारा ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो था इहा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी आहे त असां सां ॻाल्हाए मीर प्रकाश खां अब्दुल्ला महर शुएब महर ऐं चवंदा अस्सलाम अलैकुम आर जे गुलाब खान ऐं आर जे लैला ऐं प्लीज़ असांखे सॉन्ग ॿुधायो अहमद मुगल जो अदा जंहिंजो ही ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आयो आहे अदा ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: ईद मुबारक सुणल साईं खुश हुजी तूं शाल सदाई अहिड़ो ईदू हरदम माणी मुंहिंजा मिठड़ा क़यामत ताईं आव आवां जो पंहिंजो आरजे

0: पेट और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: शदीद गर्मी के पाए शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना, इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: असा ईद उल अज़हा जे पुरमसरत मौके ते देश तोड़े परदेस में रहंदड़ मुसलमान भाइर यूनियन काउंसिल पुराणो गचेरे जो आवाम ऐं सिंध जे कुंड कुट छ में रहंदड़ मुझे मारूड़न के दिल जी गहराइन सा ईद जो लख लख वाधायूं पेश करियूं था। पारा रेस अमानुल्लाह बुघियो, रेस अयाज खान बुघियो, रेस मंसूर बुघियो। असा ईद उल अज़हा जे पुरमसरत मौके ते सूबाई घरू वज़ीर मोहतरम ज़ियाउर सलंजार साहब ऐं मोरो वासिन खे दिल जे गहराइन सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था। दुआ गो आहियूं त सदन हर ॾींहुं ईद

0: असां ईद उल अज़हा जे पुरम सरहद मौके ते घरू खाते जे सूबाई वज़ीर मोहतरम ज़ियाल सलंजार, नौजवान क़यादत, गरीबनि जे हॾ ॾोखी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे मेंबर रेस हरमंद ख़ान बुगियो, MNA रेस ज़ुल्फ़िकार अली भेण, यूनियन काउंसिल गचेरो पुराणो जे चेयरमैन रेस मोहम्मद अकरम ख़ान बुगियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उहिदेदारनि, वर्करनि, देश तोड़े परदेस में रहंदड़ सभिनी मुस्लमान भाइरनि खे ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था। पारां वॾेरो मोहम्मद मुबीन बुगियो ऐं माजिद अली मोराई। असां ईद उल अज़हा जे पुरम सरहद मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस सखर टाउनशिप आरएफ बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0333668640405719।
1: अदी ॾिसो त ॾे मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए।
2: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं। हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
3: खुशखबरी, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही, MBBS, FCPS, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो, माहिर अमराज, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर ऑपरेशन, औरतुनि में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलिन जो इलाज ऐं ऑपरेशन, बेओलादी जो खास इलाज ऐं टेस्टूं, हमल दौरान ब्लड प्रेशर।

0: शुगर ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज, औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज। यादि रखंदा, ग़रीब मरीज़नि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर। एड्रेस: सिंध मेडिकल सेंटर, VIP रोड, लाड़काणो।
1: टाइम: रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं। आचर: सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं।
0: वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-307-1553। सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: प्रोग्राम में शामिल कयूं था एक कॉलर के। अस्सलाम वालेकुम मदाम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह जा एहसान। केर ॻाल्हायो था आदा मुंहिंजा? साईं मुंहिंजो बिस्मिल्लाह, इहो ख़ुशि आहियो, ख़ैरात
4: आहे?
3: ख़ैर मुबारकूं तव्हांखे बि, ईद जूं मुबारकूं। कीअं तव्हांजी ईद रही? गोश्त वग़ैरह खाधो अथव?
4: जी बिल्कुलु, अलहमदिल्ला खाधो अथऊं।
3: हा, अञा खाओ पिया?
4: अञा खाऊं पिया, पीऊं, खीसे पीऊं आहिनि।
3: अच्छा, उहे छो अचार रुगो तव्हां खाओ था या पाड़े वारनि खे बि ॾिनो अथव? हा, बिल्कुलु सही आहे, बिल्कुलु सही आहे। अच्छा, हाणे दोस्तनि खे शामिल कजो था।
4: दोस्त आशिक अली मोरो ऐं ॿिया जेके ॿुधनि था, सभिनी खे सिक भरियो सलाम। मुंहिंजी फरमाइश पूरी कयव।
3: तव्हांजी फरमाइश, अहमद मुगल जो कलाम तव्हां चयो न दा? ममताज़ लाशारीअ जो, ठीकु आहे दा, कोशिश कयूं था। टाइम थोरो आहे, इन जे करे कोशिश कंदासीं त तव्हांखे ममताज़ लाशारी ॿुधायो। जी दा, ठीकु आहे दा, ठीकु आहे, ठीकु आहे। वॾी महिरबानी भाउ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। ऐं अदा जन चवनि था त असांखे ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में तव्हां कलाम ॿुधायो था। हाज़िर था, तव्हांखे ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में बि कलाम ज़रूर ॿुधाईंदासीं। प्रोग्राम जो वक़्तु बाक़ी थोरो वञी बचो आहे, ऐं उन में सभिनि जूं फरमाइशूं त हिकु ई वक़्तु पूरियूं नथियूं करे सघजनि, ऐं इन जे करे बसि हाणे आख़िर में जेको सॉन्ग हलाईंदासीं न लैला, उहो सिर्फ़ पंहिंजी पसंदि वारो हूंदो। ईअं ई हूंदो। कॉलर त आख़िरी कॉलर तरफ़ हलंदो। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा, केरु किथां खां ॻाल्हायो था? ख़ैर मुबारक। अदा, केरु ॻाल्हायो था? साईं मरम साहब, तव्हांखे बि ईद जूं मुबारकूं हुजनि। जी हा, बिल्कुलु, लैला बि तव्हांखे ईद मुबारक चई रही आहे। हलो, सही आहे। टाइम थोरो आहे प्रोग्राम जो, दोस्तनि खे शामिल करणु चाहियो था त करे। अच्छा, 72 कालूं तव्हां अकेले ॼणे कयूं हुयूं? जी बिल्कुलु, सिंध राउंड अप असांजो मशहूरु आहे, ऐं उन खां पोइ उन में सुठी इंफॉर्मेशन हूंदी आहे, सुठी ॼाण हूंदी आहे न दा? जी हा, वॾी महिरबानी, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि दा। लखे सान, लखे सान। त प्रोग्राम जो वक़्तु बि पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। वञण खां पहिरियां हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं, पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, पंहिंजे दोस्तनि जो, पंहिंजे मिटनि माइटनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं तमामु घणी तेज़ गर्मी आहे, उन तेज़ गर्मीअ खां बचण जे लाइ पाणी जो इस्तेमालु वध मां वधि कयो, ऐं वण ज़रूरु पोखियो। इहो हमेशह मां पंहिंजे सभिनी प्रोग्रामनि में चवंदो आहियां, ऐं अॼु बि तव्हांखे इहो ई चवंदुसि त वण ज़रूरु पोखियो, पंहिंजे हिसे जो हिकिड़ो वण ज़रूरु पोखियो। ऐं वण पोखे करे तव्हां असांखे उन जी तस्वीर कढी इन ई नंबर ते, जेको नंबर तव्हां वटि आहे 0327-36-84-620, इन ते वॉट्सअप करे ॾियो। ऐं वॉट्सअप तव्हां कंदा त पोइ जुमे वारो जेको मुंहिंजो शो थींदो, उन जुमे वारे शो में उन खे पसंदि जो सॉन्ग बि उन जो हलाइबो, ऐं उन जे लाइ ॾाढी सुठी ऑफर हूंदी हुई जुमे वारे ॾींहुं तव्हांखे ॿुधाइबी। त वण ज़रूरु पोखियो, ऐं असांखे पंहिंजे दुआ में ज़रूरु यादि कजो। अल्लाह से तमाम सभी की खुशी आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला आयत रे तमाम सा गद हुंदासी तेस तई जे लाए दीदा इजाजत पांजे आर जे गुलाब खान बहन ए लैला सुमरो के तलावाही अलैनी के बाद।

0: 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर।
3: ईरानी सदर मसूद पजिश्कियान पारा मुआहिदे ताईं पहुचण ते पाकिस्तान जी कोशिशन जी वखाण। मसूद पजिश्कियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखियो आहे त मुआहिदे बाबति पाकिस्तान जे असराइती कोशिशन ते थोरायतो आहियां। इंसानी हमदर्दी वारे मौके ते मलेशिया ऐं मुआहिदे बाबति पाकिस्तान जी कोशिशन जी वखाण।

मसलो हल कयो वञे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त ही ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ुज़ लाइ सियासी अज़म ऐं माली मामलनि जी अहमियत उजागर करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गॾियल क़ौमी अमन पंहिंजो हिसो आहे।

शिकारपुर भरसा गोठा की कोशिश दौरान पुलिस पहुंचने पर मुकाबलो फायरिंग में डुहारी कादरू कमालाणी मारजी वो पुलिस जो चवण है मारजी वेल डुहारी वटा पुर थियल मोटरसाइकिल टीटी पिस्टल लाश अस्पताल मुंतकिल कर जांच शुरू कई वही है।

सिंध में पाणीअ जी खोट बरकरार। वारो माइनर डहरवा ऐं ॿियनि शाखनि तोड़ी वाहन में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकार वीरकोश रेगुलेटर वटि धरणो हयो। लोहड़ी जे ॻोठ अछियूं कुबियूं जे रहवासियुनि बि पीअण जे पाणीअ जी शदीद खोट ऐं बिजली

0: ऐलानियल लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहरो कर धरणो हयो ऐं नारेबाजी कई।
1: अॼु जो जेको तव्हांजो ज़हर आयो तव्हां पाण खाधो मुड़ुसु
2: ॾिनो भॼी वियो आहे।

मोरो में भी शादी खां रोकंटे जवाबदार मुबैना तौर पंहिंजी ज़ाल खे ज़हर ॾेई छॾियो। औरत गठी चुकी हालत में अस्पताल मुंतकिल, दर्स रोड थी रवा छन। मुसमात जमीला अस्पताल में ॻाल्हाईंदे चयो त संदसि मुड़ुस मोहम्मद जतोई ॿी शादी करण पई चाहे, रोकण तां हुन मूंखे ज़बरदस्ती ज़हर पीआरियो आहे। वाई पांडी भरिसां बि साॻी क़िस्म जो वाकियो। ॻोठ पीर बख़्श लाशारी में मुड़ुस फ़हीम ब्रह्माणी ॿी शादी जी इजाज़त न ॾियण ते मुबैना तौर ज़ाल खे शेमीरा खे तशद जो निशानो बणाइण बाद मिटी जो पाणी पीआरे छॾियो।

0: नीरपुर माथेलो में एक हफ्तों अग जेड़े में मुबैन तौर भारती वियल गोठाणे के वारिसन जो एसएसपी ऑफिस अग्या धरणो वारिसन हफ्तों गुजरण बावजूद पुलिस अकबर समय जो जे कातिल की गिरफ्तार न है क्यों कातिल गिरफ्तार कर इंसाफ पे वने। गुजरियल डी विचंदे बुडी वो शरादपुर भरसा जाम ब्रांच में विचंदे नौजवान अली आराई बुडी वो संदस गोला जारी। आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड जो ऐलान कर छो। दुनिया जो मशहूर फुटबॉलर मेसी छहों भेरो फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन की नुमाइंदगी कंदो। अर्जेंटाइन मेगा इवेंट में पैंजी मुहिम की शुरुआत 17 जून से अलजजायर खिलाफ कंदो। फीफा वर्ल्ड का जून तई अमरीका कैनेडा ए मैक्सिको में खेलो वेंदो।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे GAFM नेट।
3: सिंध की हो तो आवाज भी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
3: 88 नेटवर्क GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: शतीय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें। हल्के कपड़े पहने सर ढांप कर रखें। धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 的加油道。
1: 加油！तमाम जी तमाम जी पूरी टीम जे नाले आ कुछ दोस्त सब आए
0: जी जी जी अच्छा मके कोई गानो तो गुनगुनाए बुधायो थोड़ो यार तां जी आवाज मके सुरीली पे लगे
1: गानो
0: कोई थोड़ो घणो एकडी लाइन
1: ए तो मुजो आवाज भलो सुनाए
0: पर तमा गायो खबर पे जीदी
1: अच्छा
0: मुगल बुधायो कोई मसलो नाए
1: रामान मुगल जो
0: वाह वाह वाह वाह

0: हूंदा ईअं ई न
1: मां
0: माइक जे करीब आना नी लाए थैंक यू तवा चो तेरी आवाज बड़ा दर्द है छोरे थैंक यू सो मच खुर्शीद भाई थैंक यू सो मच बिल्कुल जी तरह हमारे साथ खुर्शीद भाई बहुत प्यारे से थे और बेरापुर से उन्होंने कॉल किया है मैंने भी आज गाना गाया अहमद मुगल का बल्कि रहमान मुगल का असा रोई रोई खिलायो से जन के अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: हां जी केर असा सबनी सा गारी मुबारक हुजे बा
2: खैर मुबारक इसबाक बा अब्दुल वाहिद जतोई तो गला गोटा सामण कान जतोई का
0: अब्दुल वाहिद जतोई साहब केड़ा हाल चाल था बा
2: खैर अलहमदुलिल्लाह काम दयो ता जा केड़ा हाल ने खुश आयो तबीय सही आ
0: सफा मजे में यो बुधायो वाजिद भाव कोई गानो शानो बुधायो पांजी आवाज में यार अजी साहब
2: गानो सर असा के कोन ही जवान गाना बुधायो ता हां
0: अच्छा सही सही सही तो पो तमा यो बुधायो ता जे गोठ में की गर्मी थी पए
2: गर्मी ताणी मौसम गर्मी जी गर्मी तरह एडी बनाने एडी कानी पो आने पखा लगा पया ने सारे होता कन में पया हूं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त माना जिंदगी सुठे नमूने ताजी गुजरी रही है गर्मी भी इंजॉय था के सर्दी भी इंजॉय था के ये ना
2: जी जी जी
0: अच्छा वाजिद भामा हाँ अहमद मोगल तो प्ले क्या कैसे नाले था करना चाहो
2: बस जेके दोस्त भाईर बुधी रहा सभी के अब्दुल वाहिद तरफा अस्सलामुअलैकुम
0: वालेकुम अस्सलाम खुश रहो हमेशा वाहिद भाई थैंक यू अल्लाह हाफिज हमारे साथ प्यारे से वाहिद भाई जनाब और अपनी औताक में वो आज के दिन को भी इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं जनाब गर्मी सर्दी सब सीजनल है तो जनाब आते ही हम इंजॉय करते हैं और होना भी यही चाहिए कि हर सीजन को हर दिन को इंजॉय करते रहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम चलिए जनाब लगता है हाँ अस्सलाम वालेकुम आ गए अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: क्या बात है हमारे साथ आ चुका है इरफान भाई खबड़ी भिट खां ये ना
3: बिल्कुल अशाक भाई कैसे हैं आप ठीक हैं आपको ईद का तीसरा दिन और आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक
0: थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी ये बताओ तीसरा दिन गुजर कैसा रहा आपका
3: अशाक भाई मैंने कहा कि आपको मुबारक दे दूं जैसे मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर
0: भूल जाऊंगा
3: बताया आपको
0: नहीं
3: मेरा जो बंद आपका अपने का बटन है ना वो अभी खराब है
0: आपका तो शुरू से खराब है जब से आप आए ना मेरा प्रोग्राम जब से शुरू है आपका ऑफ का बटन ही नहीं मिलता
3: तो अशाक भाई
0: जी जी
3: आज भी वही सीन हुआ कि कॉल पिक नहीं हुई और आपने सलाम कर दिया तो मैंने कहा कर अल्लाह करे केवल मेरी पिक हो जाए ना हो कि मैं वही सवाल करूँ अशाक भाई ये आज भी कौन को बहुत सारी गर्मी लगी है
0: किसको लगी है गर्मी सॉरी फोन
3: में
0: फोन को असल में देखें जितने भी ये डिजिटल आलात होते हैं ना ये जो फोन हो गया कंप्यूटर हो गया मिक्सचर हो गया ये बहुत गर्मा गर्म हो जाते हैं जब गर्मी होती है तो इनका भी मूड खराब हो जाता है ना जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा भी मूड खराब हो जाता है
3: बिल्कुल ये ठंड में भी इसका मूड खराब हो जाता है हम इंसानों की तरह और इनका मूड खराब और कभी कभी तो ऐसे भी जैसे हमारा मूड आप होता है ना
0: हाँ बिल्कुल
3: और मुंह पे 12 बजते हैं तो इनके भी मुंह पे कभी कभी 12 बजे होता है
0: इनके तो मुंह पे 12 का इनके मुंह पे 13 भी बजते हैं 14 भी बजते हैं और 15 भी बजते हैं
3: हाँ क्योंकि हमारे पास जो टाइम है ना वो 24 घंटे वाला लगा हुआ है
0: 24 घंटे वाला लगा हुआ है एग्जैक्टली इरफान ये बताओ कि अहमद मुगल आपका बहुत फेवरेट गाना मैं प्ले करने लगा आपके बहुत फेवरेट सिंगर का किसके नाम करना चाहेंगे
3: कौन सा सॉन्ग चल रहा है क्या
0: चल नहीं रहा अभी वो मैंने लगाया है वो खुद गर्ज सा प्यार करे
3: अल्लाह अभी तो ईद चल रही है अभी तो ऐसे सॉन्ग ना सुनाओ
0: नहीं वो बिरोही भाई आए थे उन्होंने कहा कोई दर्द वाला गाना सुनाओ अब मैं उनको चुटकी तो यहाँ से काट नहीं सकता था कि उनको दर्द पी लो तो मैं कोई ऐसा
3: सुनोगे ना तो अहमद मुगल ये बड़ी पुकार करेगा मौला साईं तुझी दुनिया में ये भला चो थींदो
0: ये अच्छा
3: प्यार वफ़ा जे बदले में है तो दर्द रुगो तो मिलंदो
0: मेरी व्याह से बाप होता तो गर्मी तो बदल दी आप किसका नाम करना चाहेंगे ये गाना
3: ईद जे दिन ते एडो कलाम बहरहाल मुझे फेवरेट सिंगर आया अहमद मुगल ॾाढो फेवरेट आए मां सॉन्ग जेका म्यूजिक सां मुंहिंजी मोहबत थी वो अभी अहमद मुगल जे करे
0: एग्जैक्टली मैं भी बहुत सुनता था इनका एल्बम आया था वो हिक

0: आज सबने कसम खाई है रुला के रहोगे तुम लोग आज सबने कसम खाई है रुला के रहोगे तीसरा दिन है आज
1: जीरा हमें रुका।
0: वाह वाह वाह।

0: आपको
1: नहीं
0: अहमद मुगल रोके सॉन्ग गाता है और वैसे वो खुश होता है, हम उसका सॉन्ग जब भी सुनते हैं तो खुद रोते हैं।
1: हाय हाय मत रोना, मेरे
0: बार रोता है, हम बार बार रोते हैं।
1: क्या हरती भी मत रोना मत रोना, हंसते मुस्कुराते रहो और यूं ही खिलते खिलखिलाते रहो।
0: शायद मुझे लग रहा है कि ब्रेक के बाद सॉन्ग चले होगा।
1: नहीं अभी कर दिया मैंने, देखेंगे आपके पीछे से आ रही आवाज आ रही।
0: बिल्कुल मैं सलाम दूं दोस्तों।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: सलाम सिस्टर मिसेस अली फौजिया फरजाना राय कुमरो मंता कुमरो हुसैन बच्ची विस्तरो फाइन विस्तरो आखिर गुलाम अहमद सांबल लुकमान चाचर नजीर मंगीर बचन तमानी जेके दोस्तों सभी के अरफान अली से वफारा इलाही सर।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: जी।
1: हमारे साथ इरफान भाई और बिरोई भाई की फरमाइश पर हम चला रहे हैं अहमद मुगल का सुपर हिट गाना, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: अजा के पुर मुसरत मौके पर GSAKHAR FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक

0: नजर आए जो महसूस हो अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पंजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
0: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
1: DHMS सिंध
0: RHMP इस्लामाबाद
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
0: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
0: कमर दर्द
1: अर्कुन निसा
0: जोड़ों का दर्द
1: हेपेटाइटिस
0: वजन की कमी या ज्यादती
1: बे औलादी
0: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
0: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
0: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
0: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
1: राब्ते के लिए
0: 0326-22-00-40
1: छा तव्हां समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाइण चाहियो था छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर DIT कोर्स 6 मंथ CIT कोर्स तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानीअ में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सां गॾु सिखिया मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो ऐं पंहिंजी समर वेकेशन खे कामयाबी ऐं सिखिया जो बहितरीन मौक़ो बणायो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एडमिशन्स ओपन नाओ व्हाट्सएप 03003113830 मोबाइल 03000093127 एंड 03013865090 एड्रेस लार टावर फर्स्ट फ्लोर 100 फीट रोड भरसा IBA यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 सखर ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्न स्किल्स बिल्ड योर फ्यूचर
2: यार मछा क्या किथे वन्या घर में वेठो आहां पर ठीक ही नहां शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नाहे थई
3: छो भला छा थियो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
2: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वञन था ऐं सजो ॾींहुं सुस्ती महसूस थे थी कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां
3: यार तुझा घणा न बस हिक ही मसलो आ
2: हिक इहो कीअं
3: हा तुंहिंजो मैदो ख़राब आ छा तो न ॿुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी
2: त पोइ मां छा कयां
3: सवलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट पोखजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
2: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
3: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616 शिफ़ाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
4: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हॾन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर ख़ारिश ॿारनि में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पिते गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़ दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 0327-84-60-746

उज़ा मुबारक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी मोहब्बत ईसार ए भाईचारे के अजीम पैगाम से भरियल ईद उल उज़ा के इन पुरमुसरत ए बरकतन वाले मौके से सवार मोहम्मद बचल शंबानी अब्दुल रसूल भुट्टो अयाज भुट्टो सुलेमान भुट्टो यामीन भुट्टो अली हसन भाबो अली गुल कटवर रजा मोहम्मद मस्तोई सैयद इमदाद अली शाह खान मोहम्मद महर मकसूद न्याजी अली मोहम्मद भमरो अला वरा

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जी जनाब, मुझे आपकी याद आ गई, मैं वापस आ गया आपके साथ आपके अपने शो ईद की धूम में। तो जनाब आप प्ले करते हैं एक जबर सा, नहीं गाना क्यों प्ले करेंगे जनाब, आपकी कॉल लेंगे, मैं तो जस्ट आपको चेक कर रहा था। लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: सर। वालेकुम सलाम सर।
0: के रदास सबरी संगारी मुबारक हो जेवा
1: सर। मुनीर सोलंगी खैर पर मीरा सर।
0: मुनीर सोलंगी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है
1: सर? एकदम मुबारक ट्रेनिंग सर।
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुनीर सोलंगी तव कराची में हूं जगह कम कार कंदा हो तवा इत
1: जी सर।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, घणे ॾींहं छुटी अथव
1: सर?
0: सर माशाल्लाह माशाल्लाह, तो एंजॉय किया सखर जी गर्मी है, खैरपुर जी गर्मी के
1: ढी गर्मी है सर, ढी गर्मी है। कराची ना सर?
0: हाँ कराची बाकी एतरी ना है, पर इतने इलाही आए, पर छा क्यों था मोकलू भी तो गुजारणियों है न।
1: बिल्कुल सर, बच्चन का मोकलू
0: गुजारणियों। तुम ये बताओ ईद का टे ढा कि गुजरिया? जबरदस्त गुजरिया हूं
1: सर। बस ये तो पांच मुझे मामू खैरपुर मुजा ही कह सर बड़ी सर।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तारी जॉब कि हले?
1: हाँ सर अलहमदिल्ला, बस तुम दुआ सर सही के लिए सर।
0: अच्छा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। यो बुधायो तो कहते घुमण फिरण व्या हो या कौन?
1: सर व्या, सर व्या, खैरपुरी व्या।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यो बुधायो गानो केड़ो बुधाया ता क्या जो?
1: सर गानो शमन जो बुधरा, ईद जे तोहफे सा शुरुआत पेंजी थी थी सर।
0: ईद जे तोहफे सा, ओके। केंजे नाले था करना चाहे यो?
1: सर ये तवा दे नाले हो जे
0: नरदिया सबे नाले। ओके ओके ओके। मुनीर सोलंगी साहब पांजो खास ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ है मुनीर भाई, बहुत प्यारे से, और जनाब कराची से अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए अपनी फैमिली के साथ, और हमारे शो को भी एंजॉय कर रहे हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरदा सा सबनी सा गड़ो
2: शिकारपुर खासो जमालदीन भयो?
0: जमालदीन भयो साहब, ईद जो टे ओडी तांके मुबारक।
2: खैर मुबारक तास दिन जो मुबारक दा।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जुमे जरी आज छाता क्यों कारे घुमण फिरण जो प्लान तव?
2: बस घुमण फिरण पाले शहर शिकारपुर में पाले जिले में पाले इलाके में।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। शमन प्ले क्या तो केंजे नाले से करना चाहो?
2: हां अहमदाबाद ला भयो नेम तला बंगा को जगह जगह दोस्त बुधन पैदा दे वनी वनी को
0: वालेकुम असलम सभी तरफा तक भी मुबारक। थैंक यू सो मच अदा पांजो खास कर जो जमालदीन भयो साहब तक शिकारपुर में कॉल कई है। हाँ वो शो की भी कॉल दिसूँ लाइन असा सभी से गुड केर है 03000134888। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: ठीक ठाक अलहमदुल्ला। कौन हमारे साथ? कौन?
2: अली हसन
0: बाबू। अली हसन बाबू साहब, क्या हाल चाल है? ईद जो टे ओ तक मुबारक हुए। थैंक यू थैंक यू सो मच। अली हसन बाबू साहब यो बुधायो, शमन जो गाने प्ले कर चुका है, कैं नाले करना चाहो?
2: इश्ताक भाई थोड़ो कुछ गालो भी बुधाई
0: जाए। खबर ही न पई। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बाकी जिंदगी ये हसीना ये गुजरी वी खबर ही कोन पी। कैं नाले करना चाहे तो गानो? जी जी
2: अॼु असांखे कुझु में कुर्बानी थी आहे अशोक भाई, सत पतियूं रखियूं अथऊं त ग़रीब पुरखो गर्मीअ में ॿ अढाई कलाक वेठा आहिनि त उन्हनि खे सतल पतल माण्हू घुराइनि पिया ग़रीबनि खे हिकु नंढो अर्पो ठाहिणो
0: पवंदो। इहा त सुठी ॻाल्हि आहे न त अगरि कुर्बानी कई आहे ग़रीब गुरबो कॾहिं जो वेठा आहिनि त हुन खे गोश्त छो न विरायो वियो आहे?
2: बसि
0: सही ॻाल्हि आहे। पोइ अहिड़ी अहिड़ी कुर्बानी जो कहिड़ो फ़ाइदो
2: मिलाणी आहे? मूंखे ॿुधाइणो आहे
0: वाकई अहिड़ी कुर्बानी जो कहिड़ो फ़ाइदो जेका मुस्तहक़ीन खे गोश्त न मिले त फ़ाइदो कहिड़ो? बस ख़ुश आमद। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। अहिड़ा माण्हू हाणे छा चवे अहिड़नि माण्हुनि खे जो पंहिंजा फ्रिज भरंदा था वञनि, ग़रीब मुस्तहक़ीन जेका आहिनि उहा ईअं ख़ाली हथ वापसि मोटिया था वञनि।
2: त हुनखे गोश्त न मिलियो आहे?
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। बसि साईं अलाह साईं हुननि खे हिदायत ॾे। अलाह साईं जी, बसि अलाह साईं हिदायत जी।
2: वायरस
0: خیر مبارک. ان شاء اللہ ٹھیک ہے. تھینک یو علی حسن بابو صاحب. ٹائم تھی چکا ہے, ماں تمہارے گانوں پلے کر چکا ہے, گانے کے بدھو قربانی کے بارے میں بھی گلائیں تھا.

छह महीना अग शुरू कल जंग की कीमत अवाम अदा कर रो है। जंग हाँ खत्म थे घुर्ज न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया से बयान में चाहिए कांग्रेस की मंजूरी का सिवाय शुरू थियल जंग में अवाम की बजट मुतासर रही है। जंग सबब अमरीका में पेट्रोल और बेन शयन के अघ में वाधी।

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे खेल
1: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: ट्रेसो ब क्षत्रिय छवीय 176
1: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का तहवा।
2: शदीद गर्मी के बाद

0: करे ट्राई करे हल आयो।
1: अच्छा मोरो स्टेशन इज नॉट कनेक्टेड। ओके सही
0: बुधाऊ पे जो प्रोग्राम माशाला जबरदस्त आ पर मेहरबानी करे मोरो स्टेशन हल आयो।
1: अच्छा ठीक
0: है प्यारा प्री दोस्त आयो अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे हर निमाज में तक में दुआ घुरा आयो।
1: जी जी जी थैंक यू सो मच दादा तुम पान प्यारा मानू आयो पान जबरदस्त मानू आयो इंशाल्लाह मां मोर वाले के मैसेज करे छियो है जरूर कनेक्ट कंदा
0: असन जो है तो थोड़ो एक नाच प्ले कंदा सी
1: बुधाईदा
0: सी जी जी जरूर लास्ट दिए उनका पो असन एक कलाम प्ले कजो है दोस्त शामिल कजो।
1: जी जी जरूर जरूर।

0: क्योंकि
1: ईद एक कुर्बा का पैगाम है, इसार मोहब्बत और भाईचारे का, आपको और आपके अहले खाना को। जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा की बहुत सारी मुबारकबाद।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म लिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
4: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
4: DHMS सिंध,
3: RHMP इस्लामाबाद,
4: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
3: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
4: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
3: कमर दर्द,
4: अर्कुन हिस्सा,
3: जोड़ों का दर्द,
4: हेपेटाइटिस,
3: वजन की कमी या ज्यादती,
4: बे औलादी,
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
4: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
3: टाइम
4: हफ्ते से जुमेरात
3: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
4: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
3: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
4: राब्ते के लिए
3: 0326-22-00-40।
5: छा तव्हां समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाइण चाहियो था? छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था? त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे। ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश।

0: Our first floor, Sophie Road, Bharsa, IBA University, Gate Number 2, Sakhar. Glamour Institute of Science and Technology. Learn skills. Build your future.
1: Yaar macha kya? Kithe vanya? Ghar mein baitho hai haan, par theek hi naya. Shayad mujhe zindagi laika dawai nahi thai.
2: Jo bhala, chha chha tukhe. Saaf saaf budha maslo chai.
1: यार हिक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हत पेर सुन थी वनन था आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
2: यार तुजा घणा न बस हिक ही मसलो आ
1: हिक इहो किए
2: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी
1: त पो मां छा कया
2: सोलो हला है इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स ए कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो भुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
1: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
2: यो मिलंदई बेड़ी चौक

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसे गाड़ी होती तब जमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: दाखिलाओं जारी हैं मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिजिक्स रियाजी शुमारियात जैसा अहम प्रोग्राम्स ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी BS केमिस्ट्री BS बायोटेक्नोलॉजी BS एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज B.Ed 4 साला M.S. एजुकेशन बसाला मुस्तैक शागिर्दियान लाइ स्कॉलरशिप्स भी मौजूद एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50 सैकड़ों मार्कों इंटरमीडिएट लाजमी उम्र की हद 35 साल फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 तक बताई गई है लिहाजा देर न करो ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbwu.edu.pk
1: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट के तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमार समेत बिन मर्ज़न जो इलाज करे रहयो आहे रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राप्ते जिलाए 03112082600 0333714311
2: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए

0: जी जनाब, वेलकम बैक। मासे मजदूर का बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। अब लेते शो की एक और कॉल, देखते लाल पे हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। सबनी सा गड
1: कुर्बान फुलपोटो ठेरी शहर का
0: खैर। कुर्बान फुलपोटो ठेरी शहर का केड़ा हाल चाल है कुर्बान?
1: रब संग लक संग ता मुदा रही
0: फर्स्ट क्लास। ईद मुबारक हुजे ताके।
1: केड़ा मुबारक ता के बजे रही
0: आई ईद जा ट्रेडिया ता जा किए गुजरा गर्मा गर्मी में वाकई गर्मी आदा वाकई गर्मी इलाही अल्लाह तांके पांजी हफ्ज़ो मान में रखे। यो बुधायो लास्ट में मां गानो तो प्ले किया वकार जतोई जी फरमाइश से केन जे नाल था करना चाहो?
1: बस यो सही तांजे नाल गई।
0: हाय थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू सो मच। चा नाल बुधायो?
1: कुर्बान फुलपोटो।
0: कुर्बान फुलपोटो पांजो खास ख्याल रखजो अदा, गर्मी का भी बच जो। थैंक यू सो मच। कुर्बान हमारे साथ मौजूद है कुर्बान भाई। और जनाब अब शो के आखिरी लम्हा चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते चलें, तो लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कॉल तो लगी लेकिन आवाज नहीं आ रही इनकी। चलें जनाब कोई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब इनकी कॉल लगी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरदा सा सबनी सा गडो
2: इश्तियाक नजारी साहब आए थे जितने को लाए केटी शाबिली का
0: जायद भा केटी शाबिली वाला सब किए हैं तवा की आयो
2: भला या माल बात हम उधर की आयो ठीक आयो
0: फर्स्ट क्लास ईद जो टेवड़ी ताके मुबारक हो ज्यादा
2: अलहमदुल्ला तहां के तरह भाई से टियों दिया मुबारक हो तहां जे पूरा टीम को सब ने बदन रण के।
0: थैंक यू अदा। यो बुधायो हाने मा गानो प्ले तो क्या तावला जो कहन जनारा था करना चाहो
2: तो तहां के डेडिकेट करा दे मुझे बाबा अब्दुल कदीर जतो अब्दुल वही जतो जावे जतो यानी मेरे जतो है तो अर्दा दियो।
0: जी जी हाजिर हाजिर हुकुम।
2: दोस्तन के जको आदा तो एडवांस न चाहिए यार कन पंजो दिन मा कुंदो आ तो कुछ मानो किए पे जवान कुछ किए देखो ईद जा दी हूं ता ते दिया ता ई कहीं जा साल का बाद दे ये समझ सब का वडो दिया खुश है दियो ईद जो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: जेके भी दोस्त नाराज आन त उनन के केत्र इंसान नाराज हो पर ईद जे दिया उन के जको आ परचाण गो दे जो जन ता करे बा भरो सुना हम तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेका दोस्त नाराज आन जेका मिट माइट नाराज उनके परचायो उनके गले लगायो रंजिशू दूर कयो।
2: जी जी कोशिश मानू करे।

0: चीज़ को आए तो कोशिश करे इंसान जो पैंकी कोशिश करे कोशिश कामयाबी कुंज करा
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तमाम घनी सुठी गाल कही है जाहिद भा और कोशिश करनी खपे तो कोई भी असा नाराज न थे इन वडी लिया
0: जी बाकी थी वो असा चौदा हो भाई हो चौदा तो ऊपर चेंडो इन मन गलत से इंसान कदे को परे पजी ना
1: सही गाल आ बिल्कुल तमाम सुठी गाल कही है इन सुठी गाल के असा तमाम दोस्तन तई पहुंचाए छरी है इंशाल्लाह ताला सब अमल कंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट शो इंशाल्लाह फ्राइडे ते
0: चलो ठीक है साईं वडी मेहरबानी
1: थैंक यू जाहिद भाई थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब जाहिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि रंजिशें दूर कीजिए अपनी और गले लगाइए उन लोगों को जिनसे आप नाराज हैं अगर आपके बारे में कोई या उनके बारे में कोई गलतफहमी आपको तो मिलकर उन अपनी जिंदगी को आसान पर एंड हो जाए इसलिए कोई से नाराज ना रहे और दिल से मुतमईन हो जाए लेते हैं शो की लास्ट कॉल और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम अस्ताक भाई साहब आप
1: ठीक ठाक मुझे प्यारा भा खेर पियो गलाए किथा पियो गलाए ईद मुबारक
2: खैर मुबारक
1: सोना भाई छा हाल चाल ठीक ठाक सब मजे में सब मजे में आई ताकि ईद मुबारक हो जाए लास्ट डे
2: जी खैर मुबारक जुम्मा मुबारक
1: थैंक यू सो मच अदा लास्ट गानो प्ले कर चुका है कहीं ना करना चाहो
2: हाँ सर नाम कौन पहना सबका पेड़ आली हसन भाई अमी नाले अलीगुल कटवारा उनके बाद में जवाहर बच्चन चंबानिया शिकारपुर का जमालुद्दीन भयो जेके भी श्री प्यारा बुधी रहा सभी के
1: सही थैंक यू सो मच दा
2: ठीक है सर वडी मेहरबानी
1: वडी मेहरबानी दा वडी मेहरबानी जी जनाब हमारे साथ सोना खान मस्तोई और अब शो को मैंडअप करने का टाइम पहुंचा है रंजिशें खत्म कीजिए दिलों को बड़ा कीजिए और लोगों को गले लगाइए यही हमारा लास्ट का पैगाम है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से तीसरा दिन बहुत मुबारक अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले जुम्मे को और तब तक के लिए अशफाक को दीजिए इजाजत टेक केयर गुड बाय वन नाइस लव यू ऑल एंड अल्लाह के बाद

0: जिते म्यांमार ऐं सलामती लाइ सदाई दामिरी असराइतो ऐं ज़िमेवारो किरदार अदा कंदो रहियो आहे। ओमान खे तबाह ऐं बर्बाद करण जहिड़ा बयान आलमी लाॻापनि में कानून जी भजकड़ी खे मामूल बणाइण जी अलामत आहिनि। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां गडि॒यल क़ौमनि जे अमन दस्तनि जे आलमी ॾींहं ते पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त आलमी अमन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकारनि जी बहादुरी खे सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान 60 वरियनि खां यूएन अमन मश्क में नुमाया किरदार अदा करे रहियो आहे। कश्मीरियुनि जी उमीदनि मूजिब कश्मीर मसइलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त हीउ ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ लाइ सियासी अज़म ऐं माली मामलनि जी अहमियत जागरण करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गॾियल क़ौमी जे अमन मश्क में पंजो वॾो हिसो आहे। रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जे तरीक़ा तब्दील थी चुका आहिनि। अमन दस्ता हाइबर ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन लाइ जानियूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स खे पाकिस्तान पारां भेटा पेश। ISPR पंहिंजी पधराई में ॼाणायो आहे त आलमी अमन लाइ मुसलसिल ऐं इज्तमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 237,000 पाकिस्तानी अमन मश्क में पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई चुका आहिनि। यूएन अमन मश्क में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन लाइ नवां चैलेंजेस बणजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी तौर ते वाशिंगटन पहुतल। परडे तजवान मूजिब वाशिंगटन आमद ते पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। मीरपुर ख़ास तालीमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ़्तार ठेकेदार जा छिटकाईंदड़ इंकशाफ़। ठेकेदार नईम गोरी चयो आहे त मनपसंद इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि खे कापी कराए वेंदी हुई। रिश्वत एवज़ मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारा वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रूपिया रेट मुक़ररु हो। 1,000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधाराया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि करे अनवर अलीम खे ॾींदो हुयसि। 2023 में बिल्डिंग कमीशन जी मद में वधीक 11 लख रूपिया पिण ॾिना। कमीशन खां सवाइ को कम नथो मिले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर, प्लीज मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आई टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे.
1: आवाज भी सिंपली है GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है. इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता.

0: ये भी तो जुल्म ही हो रहा कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इस्तेमाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: हमेशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दादा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जी एफएम 88 सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ऑफिसर पांच हज़ार कल 15 बजे पेट्रोल ए डीजल की फी लीटर रकम 22 रुपया घटाई जो फैसलो किया है। वजीर आज़म आवाम के रिलीफ ॾियण वाली इंटरजीन में शामिल है। गुजल हफ्ते भी पेट्रोलियम शेयर की कीमत में घटताई कर आवाम के रिलीफ फराहम किया हो। वफाकी हुकूमत सख्त तरीन हालत बावजूद आवाम के रिलीफ ॾियण लाइ कदम खणी रही है। अमरीकी दौरे ते वाशिंगटन पहुतल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जी अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रुबियो सां अहम मुलाक़ात। वितर पर लागापन ऐं ख़ासि तौर ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल्ही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां वाइदे जो मुसवदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्कनि ॾांहुं माणे छॾियो। बरतानवी अख़बार गार्जियन मूजिब मुसवदे में ईरान खे संदसि ज़ब्त थियल 12,000 अरब डॉलरनि जे असासनि जी पहुच ॾिनी वेंदी। मुसवदे में आपता हरमोस मामूल जीअं बहाल करण जी तजवीज़ बि शामिल। बरतानवी अख़बार मूजिब चीन चाहे थो मुआदे में हतमी मंसूरी गॾियल क़ौमनि मां वरिती वञे। अमरीका जे नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान वाइदे जे वेझो ज़रूर आहिनि पर अञा ताईं मुकमल वाइदे ताईं न पहुता आहिनि। एटमी प्रोग्राम तां पोइते दिखण जी पोज़ीशन में आहे। पक सां चवण ॾुखियो आहे त सदर ट्रंप वाइदे ते कॾहिं सही कंदो।
5: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
6: ईद ते सिर्फ़ चांहि नाहे ठहंदी, महफ़िलूं सजंदियूं आहिनि। टपाल मेज़बान ईद उल अज़हा जो असली मेज़बान।
7: भाजी, सीरी, पाए, पसंद गोश्त आपके हिसाब से। हाँ, पर पेमेंट सिर्फ रात से।
8: इस तकरीब अपनी कमाई को महफूज बनाए और अपने मोबाइल पे बैंक की ऐप या किसी भी पेमेंट ऐप पर जाकर QR।
3: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: सियाहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या ही सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: ये वादा है तुमसे
2: नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: एटमी हथियार न रखने राजी थियण पवन। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट जबल के हेठ उनाई में दफल थियल है। अमरीका इन कटी तबाह कर छी। यो कम एटमी तवानाई एजेंसी के सहकार से कर आपना हरमुस में कुछ बारूदी सुरंगू तबाह कई वही रह सुरंगन के भी तबाह कर।

महांगाई सटे लवाम के रिलीफ हुकूमत पेट्रोल ए डीजल की फी लीटर अग में बवी रूपया घटाई का ऐलान कर वज़ीर आज़म ऑफिस तरफा जारी कल पधराई मूजिब पेट्रोल ए डीजल की फी लीटर अग में बवी रूपया घटाई का फैसलो किया है। वज़ीर आज़म आवाम के रिलीफ दियण वाली तरजीहन में शामिल है। गुजरियल हफ्ते भी पेट्रोलियम शेयर की कीमत में घटाई कर आवाम के रिलीफ फराहम किया हो। वफाकी हुकूमत सख्त तरीन हालतों बावजूद आवाम के रिलीफ दियण लाय कदम खणी रही है।

टे महीना अॻु शुरू कयल जंग जी क़ीमत तमामु अदा करे रहियो आहे। जंग हाणे ख़तम थियण घुर्जे। न्यूयॉर्क जे मेयर ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया ते बयान में चयो आहे त कांग्रेस जी मंज़ूरी खां सवाइ शुरू थियल जंग में अवाम जी बजट मुतासिर थी रही आहे। जंग सबबि अमरीका में पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में वाधि थी।

صدر ऐं वज़ीर आज़म पारां गडि॒यल क़ौमनि जे अमन दस्तनि जे आलमी ॾींहं ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त आलमी अमन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकारनि जी बहादुरी खे सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान 60 वरियनि खां यूएन अमन मिशन में नुमाया किरदार अदा करे रहियो आहे। कश्मीरियुनि जी उमेदनि मूजिब कश्मीर मसलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त ही ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ुनि लाइ सियासी अज़म ऐं माली मुआवनती अहमियत उजागर करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गडि॒यल क़ौमी जे अमन मिशन में पंजो वॾो हिसो आहे। रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जा तरीक़ा तब्दील थी चुका। अमन दस्ता हाइब्रिड ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन लाइ जानियूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स खे पाकिस्तान पारां भेटा पेश। ISPR पंहिंजी पधराई में ॼाणायो आहे त आलमी अमन लाइ मुसलसिल ऐं इज्तमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 2,37,000 पाकिस्तानी अमन मिशन में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई चुका आहिनि। यूएन अमन मिशन में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन लाइ नवां चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे।

सदर आसिफ अली सरदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ्तार ठेकेदार जा छिकाईंदड़ इंकशाफ। ठेकेदार नईम पुरी चयो आहे त मनपसंद इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि खे कापी कराई वेंदी हुई। रिश्वत एवस्मेटिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारिया वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रूपिया रेट मुक़रर हो। 1,000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधराया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि करे अनवर अलीम खे ॾींदो हुयसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो टीको DC से PA ख़ालिद बाफ़ ते 1 करोड़ रूपियनि में वरितो।

बलूचिस्तान में 13 ॾींहं अगवा थियल सही पेमण अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघियो। संदसि बाज़ियाबी लाइ हैदराबाद में वारिसन, सियासी समाज जे अॻवाननि ऐं शहरीनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरनि चेतावनी ॾिनी चयो त सिंध ऐं बलूचिस्तान हुकूमतूं सही पेमण जी बाज़ियाबी लाइ फौरी कदम खणनि, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे जे शेख़ज़ायद वुमेन अस्पताल ऐं ॿारनि जे अस्पताल पहुतो। HIV में मुब्तला मरीज़नि जी इयादत कई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे भरिसां ॻोठ मुला अबड़ो में HIV विघे फोत थी वियल नींगर रिहान अबड़ो जे घर पहुची वारिसनि सां बि ताज़ियत कई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू शुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मेकअप से बिखरा हूँ अंधेरों में, इन खेलों में दीवारों में दो आवाज फिर से पुकारो, लेकर चलो मुझको सितारों में, मेरी बातें तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जी ए लतीफ सिंध जो आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा, नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो।

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।